0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Soundcheck. Sony FM. In studio time.
4: It's 7 AM. Bihanko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: परियोजना प्रस्तुत कर प्रदर्शनी को प्रमुख आकर्षण विद्यार्थी आपूर्ण तैयार पारे रकेट को सफल उड़ान रहा इसका साथ ही रोबोटिक प्रविधि वैज्ञानिक सिद्धांत में आधारित मॉडल प्रयोगत्मक सामग्री तथा दैनिक जीवन में उपयोगी नवीन आविष्कार प्रदर्शन थप आकर्षक बनाया थे। विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष तथा सोलू भूतकुंड नगरपालिक पांच का उपाध्यक्ष निम्मा तामाङ अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न कार्यक्रम संबोधन करते प्रमुख अतिथि जिला समन्वय समिति का प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौला ने विद्यार्थी में रहकर सृजनशील क्षमता तथा वैज्ञानिक सोच के विकास का लगी इसका प्रदर्शनी प्रभावकारी होने सोलू भूतकुंड नगरपालिक के उप्रमुख दंडीमा तामाङ ने सामुदायिक विद्यालय को शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि का लगी विज्ञान और प्रविधि में आधारित शिक्षा को विस्तार आवश्यक रहकर उल्लेख कर
1: कार्यक्रम राख्नु भएको छ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: प्रोलू एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दूसरको एक बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू तुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: टोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
2: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 4 पीएम अपराह्न को 4 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू